0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर

प्यार करने का इनाम दिया जा रहा है। इस एक नुक्ता की वजाहत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कई अहादीस का हवाला दिया जा सकता है। मसलन हजरत उन्स रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खुश कहा कि खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो रात की तारीकी में मस्जिदों में इबादत के लिए जाते हैं, कयामत में उनके लिए एक ख़ास किस्म का नूर होगा। इबन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि फरमाया रसूलल्लाह ने कि जो लोग पाँच वक़्त नमाज बाजमात खुशू व खजू के साथ अदा करते हैं उनको कयामत के दिन एक ख़ास नूर अता किया जाएगा। जो लोग नमाज के सिलसिला में इसके बरअक्स होंगे उनका हशर कारून हमान और फिर उनके साथ किया जाएगा। अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई जुमा के रोज़ बाकायदगी से सूरत कहफ की तलावत करेगा कयामत के दिन उसको एक नूर अता किया जाएगा जो उसके कदमों से शुरू होकर आसमान की बुलंदियों तक जाएगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान हकीम की एक आयत ही तलावत की उसको कुरान के इसको कयामत के दिन एक नूर अता किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जिस मुसलमान ने मुझ पर दरूद व सलाम भेजा उसे एक नूर अता किया जाएगा जिसकी रोशनी में उसे पुल सरात का रास्ता तय करने में आसानी होगी। इस तरह हर नेक मुत्तकी और परहेजगार मुसलमान को बरोदे कयामत एक ख़ास नूर अता किया जाएगा जबकि कफ़ार व मुनाफिकीन के लिए मामला इसके बरअक्स होगा। अल्लाह ताला मुनाफिकीन और कुफार के लिए फरमाता है सूरत अल हदीद की आयत नंबर 13, 14 और 15 का तर्जमा, इस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारी तरफ नज़र कीजिए कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें, तो इनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ और वहाँ नूर तलाश करो। फिर इनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक ऐसा दरवाज़ा होगा जिसकी अंदरूनी जानब तो रहमत होगी और बैरूनी जानब अजाब और अजियत।

0: के जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनकी भी बात करेंगे और जो वाक़यात होते हैं उन पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। समय नाज़रीन, ये कानून जितने बनते हैं किन की वजह से बनते हैं? कानून बनते हैं आपकी हिफाजत, जानो माल की हिफाजत के लिए बनते हैं। जब कानून तोड़े जाते हैं तो फिर कानून डेफिनेट वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। जब सख्त होते हैं तो फिर लोग शोर डालते हैं कि जी फलां कानून बन गया, फलां कानून बन गया, ये सख्तियां कर दी। जब हम आए थे तो उस वक़्त सख्तियां नहीं थी, जब उस वक़्त आए थे तो आप कानून का एहतराम करते थे, सख्तियां भी कम थी। जब कानून का एहतराम करना छोड़ दिया तो फिर सख्तियाँ भी आ जाती हैं। तो कानून तो इसी तरह चलता है ना, कानून मेरी मर्ज़ी या किसी दूसरे की मर्ज़ी से तो नहीं चलेगा। कानून बनाए जाते हैं और कानून तब्दील भी होते रहते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट में जब लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती है, आपको अक्सरियत चाहिए होती है, जमहूरियत का नाम ही यही है। इसके अलावा आप लोग या हम लोग सियासी, यहाँ की डेनमार्क की सियासी जमातों के मेंबर नहीं बनते, अपना असर रसूख बढ़ाते नहीं हैं, पार्टियों में जाते नहीं हैं। एक ही दिन हम मेंबर बनना चाहते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हम पार्लियामेंट के मेंबर भी बन जाएं, कम्यून के मेंबर भी बन जाएं, हम मेयर भी बन जाएं, डिप्टी मेयर भी बन जाएं, लेकिन हमने काम नहीं करना, हमने अपनी ज़ात को आगे बढ़ाना है। हमें क्या लगे कम्युनिटी क्या कर रही है? आप देखें, एक ज़माने में आकर अगर जिन लोगों को याद है, पुराने लोगों को याद है कि जब जहाज़ का सफ़र किया जाता था तो महफूज तरीन सफ़र होता था। उसके बाद जब कानून तोड़ने की बातें शुरू हुई, आपको एयरपोर्ट पर सहूलियात मिलती थी, आपको इमिग्रेशन में सहूलियात मिलती थी, शॉपिंग करते थे आपको सहूलियात मिलती थी, एकदम आप टिकट करा के अपनी बोर्डिंग करा के जब सीधे आगे चले जाते थे, बस छोटी मोटी चेकिंग होती थी। लेकिन अब आपको जो चेकिंग की जाती है उसकी वजह क्या, उसकी वजूहत क्या है? हमारे अपने कसूर। देखना ये जो जाकर जहाज अगवा करना, उसके बाद जो कुछ चीज़ें, गलत चीज़ें लेकर जाना, कारोबार करना, दूसरी चीज़ों गलत चीज़ों का कानून के जो कानूनी मना है, तो जब ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं उस बंदे का जब निकल जाता है तो उसका फ़ायदा होता है, नुकसान किसका होता है? तो समझ नाज़रीन, इन लोगों पर आपको भी नज़र रखनी चाहिए कि ये जो क्रिमिनलिटी है फिर उन्हीं को बेचारों को तकलीफ होती है, फिर वो मुसीबत में मारे जाते हैं, लंबी लंबी सज़ाएँ हो जाती हैं, फिर कानून को गालियाँ दी जाती हैं, सियासतदानों को गालियाँ दी जाती हैं, और हम फिर अपना भी अपना जो है तबसरा करना शुरू कर देते हैं। तो हमें समझ नाज़रीन, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की हमें सियासत करनी चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। जहाँ भी कानून का एहतराम किया जाता है आपको सहूलियात मिलती हैं, जहाँ भी अच्छे काम होते हैं आपको सहूलियात मिलती हैं। अगर कोई कानून को तोड़ेगा, दुनिया के किसी हिस्से में भी तोड़ेगा, तो कानून हरकत में आता है। जो मर्जी आप कर लें, कानून से कोई नहीं लड़ सकता, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: زمین بدتر ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی طرف اس نگاہ سے دیکھ سکیں گے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور کل ہم کیا, جو آج بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے. تو لہٰذا مقصد یہ ہے کہ ہمیں غم حسین اور غم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور شامل ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام زندہ ہی ہوتا ہے کربلا کے بعد, اور آج جو ظلم ہو رہا ہے دنیا بھر میں اس کی وجوہات کیا ہے؟ اسی پہ تو کربلا میں یہ ہوا تھا کہ آپ ایک اللہ کو مانے, ایک آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور ان کی حدیث اور ان کی سنت پہ کامل رہے. تو راجہ صاحب میرا خیال میں کہ ہمارے لوگ کافی یہاں پڑھے لکھے ہیں, وہ سمجھدار ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کا من میں رہتے ہیں کہ شاید ہماری دولت یا ہماری چیزیں جو ہے یہ ہمیں بخشش میں کام آ جائیں گی. ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے مساجد سے رجوع کریں اور اس پہ سوال کریں, کیونکہ سوال کرنا یہ ان کا حق ہے. اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے ڈسکوری کی, اور ڈسکور کرو اور سوال ہو جواب کرو تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ علم آئے. کیونکہ اگر آپ صرف سنی سنائی بات پہ عمل کریں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے. جی راجہ صاحب.
1: شاہ صاحب آپ نے بجا فرمایا. شاہ صاحب ہم جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک میں کیا ہمیں ان کے قانون کا احترام کرنے میں ہمیں اسلام نے منع کیا ہے؟
0: نہیں جی, بالکل نہیں کیا, بلکہ اسلام اتنے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس ملک کے کوئی آئین یا وہاں کے کوئی چیز سے آپ کو تنگش ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں. یہ پوری دنیا اللہ کی ہے, اور آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں ہجرت کر جائیں, یہ ہجرت کا پیغام ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظالم کی حکومت سے جو ہے وہ کفر کے حکومت جو ہے, جو کفر کافر ہوتے ہیں ان کی حکومت میں اگر صلح صفائی سے آپ رہ سکتے ہیں, امن سے رہ سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے, لیکن اگر ظالم حکمران ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جانے کا آپ کو حکم ہے. تو یہاں پہ اس ملک کے اندر آپ نے بات کی ہے, تو یہاں پہ ہمیں ہر چیز کی سہولت ہے, لیکن ہم نے کچھ چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا. جیسے کہ اس وقت بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے یہ جو فٹ بال کا فین جو قتل ہوا ہے کوپن ہیگن میں, اس نے لانگ پرو کے نیچے جہاں پہ مینگو فیسٹیول بھی اور دوسرے بہت زیادہ فیسٹیول لگتے ہیں, بلکہ لوگ سمر میں وہاں پہ بات وغیرہ بھی کرتے ہیں, وہاں پہ جو کوئی ایک ہفتہ پہلے ناروے کا اور ایک افریقن ملک کا فٹ بال میچ تھا اور بڑی سکرین لگی ہوئی تھی, تو اس کے اندر کچھ سویڈش لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ناروے کی جیت پہ نعرہ بازی کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک افریقن جو ڈنمارک کا رہائشی ہے اور پہلے بھی وہ بہت سارے کیسوں میں جیل کاٹ چکا ہے اور قتل کے بھی الزام میں وہ جیل کاٹ چکا ہے, اس نے اس سویڈش 32 سالہ سویڈش کو جو ہے وہ اتنا مارا اور اس کے ساتھی کو کہ وہ جو 32 سالہ تھا وہ زندگی کھو بیٹھا. تو ہم سب لوگ, میں نے آج بھی اور کل بھی لکھا ہے کہ بھائی ہم سب پاکستانی, ہم لوگ کمیونٹی جو ہے یہاں پہ ہم ان کے برابر کے غم میں شریک ہیں, اور ہمیں یہ نہیں چاہیے ایسے کرنا. لیکن یہ اس کے پیچھے جو قوانین بنائے گئے ہیں, جو اس کے پیچھے کالے قوانین ہیں, ان کو ختم کرنا چاہیے. اس کے اوپر ڈائیلاگ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے لاسٹ لوگ راس موسن اور ماڈرن سمتھ کی جو اپنی
1: شاہ صاحب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کوئی دیکھے نا, جہاں جرم ہوگا وہاں تو قانون شاہ صاحب حرکت میں آئے گا نا. جب قانون حرکت میں آتا ہے تو اسے تو ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کہتے نا.
0: یہ ٹھیک ہے, لیکن وہ آدمی جو ہے وہ ابھی تک یہاں پہ آزاد ہے, اور پولیس نے کہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں اس کو دیکھیں.
1: شاہ صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں ہمیشہ آپ قانون کی بات کرتے ہیں, یہاں تو قانون کا احترام کیا جاتا ہے. جو بھی قانون کی زد میں آ جاتا ہے اس کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن تھوڑی سی ڈیل مل جاتی ہے. تو شاہ صاحب موسم کی طرف آتے ہیں, اپنے سیاست کی طرف آتے ہیں. شاہ صاحب آپ بتائیں, آپ کا زندگی کا بہت تجربہ ہے, क्या सियासत जो है अपने नाम के लिए की जाती है या सियासत लोगों के लिए बेहतरी के लिए की जाती है?
0: ये अपने और अपनी फैमिली के लिए यहाँ सियासत की जाती है, यहाँ लोगों के लिए, आवाम के लिए नहीं। यहाँ पे आप वोट लेते हैं दोस्ती यारी के नाम पे और फैमिली बैकग्राउंड के नाम पे, लेकिन आप जैसे कि ये जो वाकया मैं जिसको बयान कर रहा था, ये पांच मंजर जो है, ये इसी चीज की, हमारी नेगलेसी की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर आ गए। आप ये देखें कि जो मैंने आज उनको वाजह तौर पे लिखा है, मैंने आपको कापियां भी उसकी भेजी हैं कि देखें अगर आपने ये कानून जो है अगर ये चेंज ना किए होते तो आज हमारे पढ़े लिखे फैमिलीज, हमारी जो हम लोग यहाँ सेटल्ड हैं, हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो बजाय दूसरे मुल्कों में, दूसरी जगह पे या पाकिस्तान में जिलों पार होने के, अगर वो यहाँ पे आ जाते तो आज बेहतर तरीके से ये मुल्क चलता। लेकिन आप लोगों ने दूसरे मुल्कों का मजाक उड़ाया कि ये
1: तो
0: मुसलमान।
1: इस पर कितने सियासतदान लिख रहे हैं जो बात आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस पर कितने सियासतदान, कम्यून्स के मेंबर, रीजन के मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर, कितने लिख रहे हैं? तो शाह साहब जब कानून सख्त होते हैं तो फिर पार्टियां उस चीज़ को उठाती हैं, लोग उनकी जो फेवर में होते हैं उनकी वोटों की तादाद बढ़ जाती है, कम्यून में बढ़ जाती है, पार्लियामेंट में बढ़ जाती है। यहाँ तो जमहूरियत है, जिसके पास अक्सरियत होगी वो अपने कानून मंजूर करवा लेगा।
0: देखिए जी, मैंने आपको पहले कहा कि मुझे अपने सियासतदानों से, जो यंग सियासतदान है बेशक वो मुझे जो बुरा भला जो मर्जी के, मुझसे उनसे ये उम्मीद नहीं कि वो इस तरह की बात जो है वो हाईलाइट करेंगे। वो ये तो कहते हैं कि हमने अखबारों में लिख दिया, हमने फलानी जगह कर दिया। क्या जो इलेक्टेड है क्या उन्होंने अभी तक कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जबान में या अपने रेडियो पे की है? कोई आपके रेडियो पे एक हफ्ता हो गया इस तरह के वाकयात, बल्कि इससे पहले के जो कानून सख्त बने हैं, जो डिपोर्टेशन के कानून बने हैं कि आप गैर मुल्कियों को थोड़ी सी जरा पे बात, क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई बात की है? अब ये कहना कि जी हमारे कोई इलेक्टेड काउंसलर नहीं, हमारे रिजून में भी इलेक्टेड काउंसलर है, हमारे कोपनहेगन में भी इलेक्टेड काउंसलर है, क्या इन लोगों ने आके, इन सियासतदानों ने कोई ऐसी बात या ऐसे लॉ फोर्सेस जो है वो लोगों के सामने पेश की है? और क्या उन्होंने इनविटेशन आपको या हम लोगों या दूसरे जो सियासतदान है उनको बुलाया या ऐसे सोशल वर्कर्स को बुलाया उस गैदरिंग के अंदर जहाँ डैनिस बैठे हो, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हों, डैनिश फ्रंट के पार्टी के लोग बैठे हों, मॉडरेट के बैठे हों, डेनमार्क डेमोक्रेट्स के लोग बैठे हों, सोशल डेमोक्रेट के सब पार्टी के लोग नुमाइंदे बैठे हों और उनके सामने अपनी फौसले भेजे, उनके सामने अपना नुकता वाजिया करें? क्या कोई है ऐसी हिम्मत करने वाला? हालांकि यहाँ पे इन लोगों को हॉल फ्री मिलते हैं, इनको हर जगह फ्री हॉल मिलते हैं, जैसे कि कल इन्होंने मैंगो फेस्टिवल लगाया था, ऐसी जगह इनको फ्री मिलती है, वहां पे ये लोगों को अच्छे मौसम में बुलाकर गैदरिंग कर सकते हैं और लोगों की राय ले सकते हैं कि हम में कौन सी फॉल्ट है वो आप गिला करें, और हम में जो जो तुम में जो फॉल्ट है, आपके कानून में जो फॉल्ट है इसके ऊपर वो चर्चा हो, तो फिर बात होती है। ये कहना कि फलाना वजीर मेरा यार है, फलाना मेरे इलाके का है, फलाना मैं उससे बहुत बात करता हूँ, मैं फलाने को जाता हूँ, मैं फलाने को बहुत अरसे से जानता हूँ, ये सब गलत बातें हैं, ये रूमर्स हैं, ये सिर्फ अपना कद काट बढ़ाने के लिए लोग बातें करते हैं। जो असल अगर ये चीजें वाजह तौर पर पहुंच जाती कि यहाँ के कानून में क्या क्या शिके हैं, यहाँ के कानून जो बनाए गए हैं वो कितने गलत हैं, तो आज इस तरह की चीजें हमें सुनने में ना आती। आज जो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं, जो इस्लाम को सरेआम बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि बैनर्स पे लिख लिख के बुरा कह रहे हैं, तो मुझे, मैं शर्मिंदा हूँ अपने यंगस्टर से कि क्या इन्होंने कोई बातें की नहीं। हर कोई जो है वो दूसरे मुल्क के ऊपर, दूसरे के ऊपर चढ़ाई करता है, वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करते हैं, वो दूसरे ममालिक के ऊपर चढ़ाई करते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर जहां हम रह रहे हैं, जहां हमारी अब चौथी जनरेशन, राजा साहब पहली दूसरी तीसरी नहीं, अब चौथी जनरेशन तैयार हो रही है इस मुल्क के अंदर हमारी, और उस जनरेशन के लिए क्या हमने तीसरी और चौथी जनरेशन के लिए कुछ किया? नहीं, हमने एक चीज छोड़ दी है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ गए हैं, वो डैनिश बोलते हैं, क्या उनको डैनिश कानून का पता है? क्या उनको हमारी प्रॉब्लम्स का पता है कि हम कैसे रह रहे हैं? क्या उनको इस बात का ख्याल है कि हमारी बूढ़ी माएं बेवा माए या दूसरे जो हैं हैंडीकैप फर्क हैं उनकी
1: तो शाह साहब एक
0: उनकी
1: सवाल पैदा होता है कि हम यहाँ के कानून को हर वक्त चैलेंज क्यों करते हैं, हम अपनी अदात को क्यों नहीं ठीक करते। आप काफ़ी सीनियर हैं और आपने देखा होगा कि शुरू में जब आप जहाज़ों पर सफ़र करते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे, तो आपको इमिग्रेशन में कितनी सहूलियात थी, शॉपिंग सेंटर पर कितनी सहूलियात थी, आपकी चेकिंग बिल्कुल नॉर्मल होती थी। उस वक्त एक ज़माना था आपके पासपोर्ट पे बच्चे लिखे होते थे, तो आप बगैर पासपोर्ट के बच्चों को जो है ना अपने पासपोर्ट पर एक दूसरे मुल्क में ले जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं। तो शाह साहब जब हमने गलत काम किए, कानून को जगह जगह तोड़ा, तो फिर सख्तियाँ होगी। तो अब हर चीज़ पर हम चीखते हैं और हर चीज़ को हम चैलेंज करना शुरू कर देते हैं।
0: ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये झूठ झूठ की अलामत जो है ना, झूठ बोलना, ये शैतानी वसवसे पैदा करना, गबियत करना, अपने आप को ऊंचा पैदा करना, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हमने अपनी औरतों को एजुकेट नहीं किया, हमने उनको यहाँ के कानून नहीं सिखाए, हमने यहाँ पे कोई ऐसी थिंक टैंक या ऐसी कमेटियां नहीं बनाई जो इस तरह के जो मियाँ बीवी में अगर अलहदगी हो जाती है तो उनको कॉम्प्रोमाइज कैसे कराया जाए, उनको हालात से कैसे ठीक किया जाए। तो ये जो चीजें हैं सबसे ज्यादा, आप ये देखें कि यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, दूसरे कौमें भी रह रही हैं, उनकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जितनी हम मुसलमानों ने यहाँ पे क्रिएट की है। और सबसे ज्यादा जो है चंद एक मुसलमान, ये किस वजह से, ये कानून की वजह से, कानून के ऊपर किससे बोलना है, ये उनसे बोल उन्होंने बोलना है जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि ये लोग जाके इन इन खामियों के ऊपर, जो कानून के अंदर खामी है उनके ऊपर बोलेंगे। लेकिन वो यस सर करने वाली कौम हमें उन पे एतबार कर लेते हैं, और उन्हीं के एतबार में आज जो हम जुल से बैठे हुए हैं, आज जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फैमिलीज को यहाँ इकट्ठे करने पे हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, देखिए जो नए फ्लूटिंग आ रही है, जो नए यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, उनको और उनकी फैमिलीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डेनमार्क के अंदर सेटल होने में। लेकिन हम लोग जो हैं जो
1: शाह
0: यहाँ
1: साहब
0: पे
1: बात आप कर रहे थे गैदरिंग की, शाह साहब जो प्रॉब्लम्स की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, तो शाह साहब एक नेचुरल गैदरिंग होती है, जो भी फेस्टिवल होते हैं गैदरिंग के लिए होते हैं, तो हम क्यों नहीं सियासतदानों को बुलाते और आप वाली बात, वहाँ डिबेट होनी चाहिए, अपने मसाइल डिस्कस होने चाहिए, जमहूरी तरीके से होने चाहिए, लड़ाई की शक्ल में नहीं होने चाहिए, प्यार मोहब्बत की शक्ल में होने चाहिए। शाह साहब ये काम हम करना नहीं चाहते, हमें फिक्र होती है पाकिस्तान की सियासत की कि मैं बड़ा जो है वो 30 मार खान हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो शाह साहब यहाँ रहते हुए इन मुल्कों की हम सियासत करते नहीं है शाह साहब, हम सिर्फ डिमांड डिमांड डिमांड डिमांड डिमांड, उसके अलावा हमारे पास कुछ है शाह साहब?
0: ये बिल्कुल आपने सही बात की है। कल मैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ गया हुआ था, छोटे आए हुए थे सारे, तो उनको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, तो उनको साल लेके गया था मैं। लेकिन मुझे अफसोस पड़ा हुआ कि वहां पे भी जैसे आपने बात की कुछ सियासतदान वहां पे घूम फिर रहे थे, लेकिन वो इस तरह घूम फिर रहे थे कि सिर्फ फोटो सेशन की नजर में, कोई कोई किसी को अपने ख्यालात के बारे में ही बता रहा था, कोई किसी को कोई अपने ये जो याददाश्त होती है कि मैं आपके लिए क्या करूंगा क्या नहीं, वो नहीं बता रहे थे, कोई ऐसे पंफलेट नहीं तकसीम किए जा रहे थे कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज की भी, तो रिहाइश की प्रॉब्लम है या आपको बच्चों की प्रॉब्लम है या आपको स्कूल मैटर्स या किसी चीज की भी आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा जरूरत है तो आए हम आपसे खुल के बात करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि ये लोग सिर्फ फोटो सेशन, चंद एक बंदों के साथ खड़े होकर फोटो सेशन, किसी को सलाम करने में भी बड़ी रख रखाव रख रहे थे, दूर से हेलो करके जा रहे थे। तो ये एक एक वो अकड़पन है जो अपने आप को चदराहट में रखता है। ये इसीलिए लोगों के लोग जो हैं, मैं आपको ये एक चीज वाजह कर रहा हूँ कि मुझे जो नेक्स्ट इलेक्शन नजर आ रहे हैं उसमें हमारे पाकिस्तानी मेजोरिटी जो है वो मेरे ख्याल में डेंटो को वोट डालेंगे या वो दूसरे किसी और बंदे को, नेशनैलिटी को डाल देंगे, अपने लोगों को वो वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि अब 55 साल से ऊपर हमने इनको आजमा लिया है, ये सवाए झूठ और अपने खानदानी روایات کو قائم رکھنے کے علاوہ ان کے اندر کوئی چیز نہیں. یہ مکر کرتے ہیں اور مکر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں آتی. آپ خادم ہیں, آپ نے ووٹ لیا, آپ نے آئی جی دکھائی, آپ لوگوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا, ہر ایک چیز کی, اور آپ الیکٹ ہوئے, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں سے آ کر بات کریں, اپنی چودھار نہ کریں کہ میں کونسلر. کونسلر از نتھنگ. آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. آپ کو گھوڑے بات نہیں کرنے دیتے, آپ کالوں کے سامنے اکڑ کر چلتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں ان سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں ان کو پیچھے سے جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے. میں بھی کیا تھا, ہم لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. ہم لوگ اپنی جو غبیت ہے, ہم جو باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں, لیکن یہ جو آج حالات پیدا ہو گئے ہیں یہ اتنے گمبھیر ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو نہیں پتا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 2017 سے ڈیلی بیسس پہ, ایک نہیں کہ ویکلی ہم بات کرتے ہو, ہم نے ڈیلی بیسس پہ یہاں کہا تھا کہ یہ جو اوبر ہے اس کو مت تنگ کرو, آنے دو, اپنے ورمنشپ بچاؤ, یہ پرانا قانون جو ہے ٹیکسیوں کا اس کو بچاؤ. تو لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا, لوگوں نے کہا جی شاہ صاحب پاگل ہیں, یہ اپنا کیا نام ہے راجا غفور پاگل ہے جو شاہ صاحب کو ہر وقت ریڈیو پہ لے آتا ہے, یہ باتیں کرتا ہے. اب 500-600 ٹیکسی جو ہیں یہ ویٹن آپ کی آ کے یہاں پہ کھڑی ہو گئی ہیں. اب وہ جو ہیں وہ ڈرائیور بھرتی کر رہے ہیں, وہ ڈرائیور چلائیں گے. وارمین شپ کدھر گئی, کہاں گئے آپ کی وارمین؟ جو ایک سیلس کیپ رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. کیوں کہ اب لوگوں کو اپنی پرماننٹ تنخواہ ملے گی, وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. الیکٹرانک گاڑیاں آ رہی ہیں, ٹیسلا نے اور چائنیز نے ایسی گاڑیاں ڈنمارک میں اور یورپ میں بھیج دی ہیں کہ جو بغیر ڈرائیور کے آپ کو مہیا ہوں گی. آپ کو ودن نو لمٹ کوئی ٹائم نہیں ہوگا تو آپ کے گھر کے سامنے ٹیکسی آ جائے گی, آپ کے لیے سیف ہوگی. آپ نے اس کو آپ نے پہلے ہی ایڈریس فیڈ کر دیا ہوگا, وہ آپ کو لے کے آپ کے جہاں آپ نے جانا ہے وہاں آپ کو پہنچا دے گی. وہ آپ کو ڈرائیور سے زیادہ سیف آپ اس میں اس لیے ہوں گے کہ وہ آپ کو امبائن یعنی کہ الٹے سیدھے راستوں میں لے کے نہیں جائیں گے. آپ کو ڈرائیور کے ساتھ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے پیمنٹ کر دی, جو پیمنٹ آپ نے کر دی ہوئی ہے اسی سے بے شک وہاں پہ گاڑی آسان چل رہی ہے, تیز چل رہی ہے, ٹریفک بے شمار ہے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اگر آپ نے 150 کروڑ دیا ہے تو وہ 150 کروڑ میں ہی آپ کو اس جگہ پہ پہنچائے گی. تو اب بھائی یہ نقصان کس کا ہوا؟ یہ نقصان ان لوگوں نے کروایا ہے کہ جن کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ فیوچر ہمارا کتنا ڈسٹرب ہوگا, ہم ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, ہم نے انسانیت کے یہاں پہ لوگوں کو جو کام کر کے یہ کر رہے تھے ان کے لیے کیا کر دیا. اب وہ کمپنی جو ہے وہ 3000 کے قریب جو ہے وہ ڈرائیور جو رکھنے جا رہی ہے. اور میرا تو ینگسٹر سے یہی مشورہ ہے کہ اپنی گاڑیاں دے دیں اور اس طرح کام کریں, کم از کم آپ کو پھر یہ پہنگے ملیں گے, آپ کو بیماری کے پیسے ملیں گے, آپ کو انشورنس ملے گی, آپ کی انشورنس ہوگی, آپ کے سب کچھ اخراجات جو وہ کمپنی اٹھائے گی, اور آپ مزے سے 2 مہینے کی چھٹیاں کریں, پاکستان میں جائیں بچوں کے ساتھ, امریکہ میں جائیں, دنیا بھر میں جائیں, آپ لوٹ مار کریں, جو مرضی کریں, وہ آپ کے لیے فائدہ. لیکن یہ اچھا ہے, لیکن جب یہ دوسری بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں بھی آ جائیں گی آپ کے مقابلے میں تو آپ اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ 2 ڈفرنٹ کلچر میں رہ رہے ہیں. آپ ڈینش کلچر میں رہ رہے ہیں اور پاکستانی کلچر میں رہ رہے ہیں. آپ نے دونوں کلچروں کا جو ہے وہ کو ڈیفینس کرنا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو راجہ صاحب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کمیونوں میں ڈسکس کرنے والی ہیں کہ ہمارے جو یہاں کے جو ہمارے
1: سوال ہے, آپ ماشاء اللہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. شاہ صاحب پھل کھائے جاتے ہیں, پھل اچھے ہوتے ہیں, بعض پھل بڑے پاپولر ہوتے ہیں. ڈنمارک میں بھی بہت ساری دنیا کا ہر پھل یہاں ملتا ہے, ہر دکان پہ ملتا ہے, ہر مارکیٹ میں ملتا ہے. تو شاہ صاحب میلے بڑی اچھی چیز ہیں, گیدرنگ ہونی چاہیے, آؤٹنگ ہونی چاہیے, لیکن میلوں کا نام جو ہے وہ جگہیں مفت لی جائیں اور وہاں فنڈ ریزنگ کا کام کیا جائے, اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو شاہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام سب کو اچھا لگتا ہے, مجھے بھی اچھا لگتا ہے, دکانوں میں خریدا بھی جاتا ہے, جگہ جہاں بھی جاتے ہیں خریدتے ہیں, لیکن شاہ صاحب یہ کوئی مقدس پھل ہے؟
0: मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि अगर आपने फंड रेजिंग करनी है, कुछ करना है, तो आपके लिए जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर ऐसे कानून हैं जो आपको इजाजत देते हैं। और इसी तरीके से हमने जब यहाँ पे शुरू शुरू में मुख्तलिफ कल्चर सेंटर या मस्जिद बनाई तो गवर्नमेंट ने लोगों को सपोर्ट किया, जगह दी। तो यहाँ पे तो हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के जरिए, जहाँ आप टैक्स पेयर हैं और आप सही तरीके से रह रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप अप्लाई करें, आप चर्च मिनिस्ट्री को, कल्चर मिनिस्ट्री को आप अप्लाई करें, आपको हर चीज जो है बाय लॉ यहाँ पे मिल जाती है और ये देते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या उसके अंदर मेरा नाम होगा या नहीं होगा, ये मसला सबसे बड़ा राजा साहब, कि उसके अंदर क्या ये तोकीर शाह गएगा कल्चर सेंटर, या इसके अंदर कौन बड़ा बैठा हुआ है, क्या इसके अंदर तोकीर शाह का हाथ है या नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। आप देखेंगे यहाँ पे 7 मस्जिदों की यूनियन बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे DMU बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे DMC बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे। तो जब आप कुछ कर नहीं रहे और यहाँ पे इस्लाम के बारे में और दूसरे कल्चर्स के बारे में, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको जब कानून का पता नहीं तो आप कानून वालों से बात करें। ये नहीं कि आपके बच्चे पढ़ लिखे हैं जी, वो जी हमसे ज्यादा तो कौन नहीं जानता। बात यह है कि यहाँ सब ब्रांचों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबके बच्चे जो हैं वो फलके थिंग में नहीं बैठे हुए। सबके बच्चे जो हैं वो फिजकेरी उवेल जो हैं फलके थिंग के वहां नहीं बैठे। वहां सबके बच्चे जो हैं वो वकील नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई चीज होती है तो वो मुख्तलिफ वकीलों के पास जाना पड़ता है। अभी आप एक कोई आपके प्रॉब्लम आ जाती है तो आप एक हर वकील के पास नहीं जा सकते। आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम है, आपने उस वकील को ढूंढना है और उस काबिलियत के वकील को ढूंढना है जो आपका मसला हल कर सके। तो यहाँ पे जो मसाइल हैं हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इसको जब तक आप पब्लिक को इकट्ठा करके उनके मीनिंग्स नहीं लेंगे, बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर फसाद किए, बगैर कबीयत किए, आप इन चीजों को समझ नहीं सकेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को जो है वो रहने की इजाजत हो जाएगी, बाकी जितने भी आगे पीछे घूमने फिरने वाले लोग हैं इनको ये किसी ना किसी बहाने से ये बाहर आउट कर देंगे। अगर आप आज की अखबारें देखें, अगर आप देखें तो अब मॉडर्न मैसेज में जो है डेथ फलके पार्टी का, वो कह रहा है कि उड़ेनी को तो हर सूरत बाहर निकलना है। तो हो सकता है कि मैं जो है इससे बात करूं लास्ट यूके से और मैं वजीर आजम बन जाऊं इस मुल्क का, वो अपने ख्याल का आधार कर रहा है। पहले वो चाहे यही कहता था कि मैं इसको इनको खा जाऊंगा, लेकिन अब वो कहता है कि मैं इनके साथ मिलके तो मैं ऐसी हुकूमत बनाऊं जिससे फॉरनर्स को इस मुल्क में इतनी तकलीफ दी जाए कि वो खुद ही छोड़ के चले जाए, ना छोड़ के जाए तो हम उनको बाहर कर देंगे इस मुल्क से। तो राजा साहब हालात जो है इसकी जिम्मेदारी हमारे अपने सियासतदानों पे हो रही है। हमें वो सुन रहे होंगे, उनको तकलीफ होगी कि शाह साहब क्या बातें करें, लेकिन ये उनका हक बनता है, ये उनका उनका मंशूर है, ये उनके उनका फराइज है, उनके फराइज में ये शामिल है कि वो आए बाहर निकले और आकर अवाम जिनसे वो जी मेरी फैमिली जी मैं जर्मनी में छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ जी, मैं लाहौर में छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ, मैं फलाने भाई क्या जब वोट डाले थे तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें वोट डाले थे, तुम्हें तो लोगों ने वोट डाले थे, तो तुम उन लोगों की प्रॉब्लम को पहले सुनो, उनका मसाइल हल करो। उनके लिए जो इस वक्त इतने सख्त कानून बन चुके हैं।
1: शाह साहब आपकी आखिरी बात करते हैं, फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको लेंगे। शाह साहब यहाँ लोग कहते हैं ये बातें लोग करते रहते हैं, इसी तरह हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सियासतदान का काम है सियासत करना, जब यहाँ की सियासत जो है वो की ही नहीं जाती, बंद कमरों में खाली गप्पे मारी जाती हैं, लेक्चर जाड़े जाते हैं, तो शाह साहब इससे कभी भी तब्दीली नहीं होगी। शाह साहब आप बहुत शुक्रिया, आपको दूसरे हिस्से में लेंगे आपको इंशाल्लाह। नाज़रीन ये थे शाह साहब, इनकी आप बात सुन रहे थे, अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।